0: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर्स शुक्ला गण्डकी साथ सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 98560220079।
1: प्रणाम, अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराही 103.8 मेगाहर्ट्ज़ अंतर मन की आवाज।

हेलो बाबू, सुनिए ना, आपकी शादी ना किसी ऐसी वैसी लड़की से नहीं हो रही है। हुस्न की मलिका बेहद खूबसूरत हीरोइन से हो रही है, तो आपको भी एकदम हीरो की तरह मस्त एकदम बाल बाल सेट करके हैंडसम हंक बन के आना। और हाँ, शादी के दिन ना मेरी सासू माँ को बोल के काला टीका लगवा लेने का। हमारी जोड़ी को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए।

0: ला येनो
1: कानून रोज मान्यकिन
2: मस्या छ्या मामु छ्या मस्या लु मामु लु मस्या मिने मामु
0: न्यंगी रिंठिम दिंगी जो थन लबे लागिरी न्यंगीला लोलोनो प्रयास की
3: नारी थिला थिला बुलाकी
4: कार्यक्रम आदि

0: गोइला येनो
1: कानून रोज मन है कि
2: ते मस्या छ्या ममु छ्या मस्या लु ममु लु मस्या मिले ममु
0: यंगी रिमठिम डिंगी जो थन लबे लागिरी यंगीला लोलोनो प्रयास की
3: नारी खिला खिला भूला की
4: कार्यक्रम आदिवासी

0: इसे सहे चहुर लिंग नुनिंग श्रोता लाफा को के मनिता जातले साचे इसे हुर्रा लिंग कुंचा सिया लाफा
1: याके इसे हुर्रा लिंग तम्मसे सिहे मुसिया लाफा कानुंग मगर सरस्ता कोई दुखा जात्मु खास्त लिंग को सिहा को पामु पामु सेके उसके बाहरी जाटिंग है श्रोता लाफा को
0: छिन्यू मास्पा नाको के कुटा लसा अट्टन सल्हा सुझाव यहाँ के मान्यक निहै लाफा को अर्को साता मिनाम श्रृंखला लाना किंग कान को पक्कै ताराले
1: नाको कठ मुना किंग कुराकानी जातासो सेसे त लिंगको सेके मन लेनाङ लेनाङ र कानु डुटौ मासबारके भाकमोयाक समय अवधि र डुमके नपा कानु मासबारके सही सम्मान सेमु मुच श्रोता लाफाको के ढलिङ ढलिङ धन्यवाद कानु मासबार खासके दुस्मय छ सहकर्मी लाफाके र मिगिनिङ हुँदा आभार प्रकट जातले होटा जात मन मासबार संयोजक विश्वनाथ श्रेष्ठ आदिवासी जनजाति नगर परिषद केर धन्यवाद
0: मासबार प्रायोजक पीआर कल्चर एण्ड फेसन हाउस तुलेगौडा बजार केर धन्यवाद टकरीले मासबार प्रायोजक पीआर कल्चर एण्ड फेसन हाउस तुलेगौडा बजार केर धन्यवाद टकरीले नाको के विभिन्न जात जाति पोसाक नयाँ नौलो पहिरनको चहस्त बखटाङ पीआर कल्चर एण्ड फेसन हाउस तुलेगौडा बजार के आर्मिट के मासबार प्रायोजक पीआर कल्चर एण्ड फेसन हाउस तुलेगौडा बजार केर धन्यवाद टकरीले के विभिन्न जात जाति पोसाक नयाँ नौलो पहिरनको सहस्त बखटाङ पीआर कल्चर एण्ड फेसन हाउस तुलेगौडा बजार के आर्मी के हुक्ले हैलाफाको
1: मुटासो काट सेहेच लिङ इसै गिन भुरा दास्तै कान माछा बराक सविता सिजाली झेरी मगर
0: ना एलिना हुन्चिन पुहार मगर भाके छानले छोरले चेतौ सेमिङ्गी पाऊ
1: नाको भने सेमुना मुनि रेडियो ढोर बराई काठ भोङ सोम थुप्ला के मेगा हर्ज अन्तर मनु आवाज